0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला दस कटरस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
0: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
0: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक, व्यापारी, शुभचिन्तक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण ग्राहकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: हाम्रो यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका आधुनिक डिजाइनका जेन्ट्स कपडा, शर्ट, प्यान्ट, तयारी कोट प्यान्ट पाउनुका साथै सम्पूर्ण जेन्ट्स आइटमहरू सिलाइन्छ। सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
4: न्यूज यूपी ट्रेड सेन्टर, टिकापुर 1 बलभद्र चोक, संचालक गोपाल परियार, मोबाइल नम्बर 9848424036।
6: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा प्रतीक बुक्स एण्ड स्टेशनर्स टिकापुर सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, इष्टमित्र, शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। प्रतीक बुक्स टिकापुरमा सम्पूर्ण किताब तथा कपीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्।
0: संचालक नवराज गेवाली, टिकापुर कैलाली।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आस महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ लेना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मई फैन संगे जिन
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804610186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली।
2: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
3: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
2: ससानो कुरामा तनाव हुने,
3: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
2: कुलतमा लाग्ने,
3: छटपटी हुने,
2: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
3: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 9 गते 16 गते र 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला।
2: टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
0: त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाटपुर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली।
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल। सम्पर्क नम्बर 9854-47-244 र 9854-22-23।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां क्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेरि सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टिकापुर से एसई मा चार जीपे लन्ना माउन्ट सैपाल के हृदय कुवार एकेली विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय मा कर्णाली मावि टिकापुर उत्कृष्ट नॉन ग्रेड विद्यार्थी उपकरण के लाख पूरक परीक्षा तैयारी कक्षा संचालन करना विद्यालय है देतियाल यूडे बर्खे विदा कटौती जानकी गांवपालिका में दुई दिने वित्तीय सहकारी शिक्षा बचत तथा ऋण व्यवस्थापन क्षमता विकास तालीम चलती हो आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुई में नेपाल स्कटलैंड संगे पराजित पूरा खबर सार्वजनिक हुईल एसई के नतीजा अनुसार टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय में कर्णाली मावि टिकापुर मनसे 10 जाने 3.6 से ऊपर जीपीए प्राप्त करने बाट संस्थागत विद्यालय की ओर से माउन्ट सैपाल इंटरनेशनल एकेडमी के विद्यार्थी हृदय कुवार 4 जीपीए प्राप्त करने बाट टिकापुर स्थित के माउन्ट सैपाल इंटरनेशनल एकेडमी के एकजाने विद्यार्थी 4 जीपीए प्राप्त करल बाटिकलस विद्यालय के नतीजा मजायल माउन्ट सैपाल इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल छतराज जोशी बतैले बाटे ओसहाका टिकापुर स्थित यूनाइटेड एकेडमी से 79 जाने परीक्षा में सहभागी हुईलमा 11 जाने 3.6 जीपीए से ऊपर प्राप्त करल विद्यालय के प्रिंसिपल परमेश्वर साहू बटोले बाटे सामुदायिक विद्यालय में कर्णाली मावि टिकापुर उत्कृष्ट अंक प्राप्त करल भा यी वर्ष कर्णाली मावि टिकापुर में 10 जाने विद्यार्थी 3.6 जीपीए से ऊपर प्राप्त करल बाटे कलसे प्राविधिक धार में 17 जाने विद्यार्थी उत्कृष्ट हुईल विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा जानकारी देने बाटे ओसंगे वीरेन्द्र विद्या मंदिर मावि टिकापुर में 8 जाने विद्यार्थी 3.6 जीपीए से ऊपर प्राप्त कर लाटें कलश खड़गा मेमोरियल मावि टिकापुर में 7 विद्यार्थी 3.6 जीपीए से ऊपर प्राप्त अंक कर लाटे विद्यार्थी के नतीजा उत्कृष्ट रहल विद्यालय के प्रिंसिपल हिरणदेव शर्मा जानकारी देने बाटे टिकापुर स्थित गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल टिकापुर मंचे 48 जाने सहभागी मध्य 46 जाने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुईल विद्यालय के प्रिंसिपल गजेन्द्र बुढ़ा जानकारी देने बाटे उसका संतरणकारी आदर्श विद्या मंदिर के प्रिंसिपल भरत तिरुआ के अनुसार 4 जाने विद्यार्थी 3.6 जीपीए प्राप्त करल और विद्यालय के नतीजा मजाइल बटोले बाटे उसके खड़गे स्मृति मावि टिकापुर मनसे सहभागी 165 जाने विद्यार्थी मध्य 1 जाने 3.6 जीपीए प्राप्त करल विद्यालय के प्रधानाध्यापक झनकराज ओझा बटोले बाटे जनजागृति मावि सीतापुर के नतीजा फे यी वर्ष मजरहल विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद भंडारी जानकारी दिने बाटे ओसंका जानकी गांवपालिका के सामुदायिक विद्यालय में 20.5% संस्थागत विद्यालय और 60.47% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुईल बाटे शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मंत्री सस्मित पोखरेल से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई में नॉन ग्रेड विद्यार्थी के लाख पूरक परीक्षा तैयारी कक्षा संचालन करना बताइलबा प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के कालिक बैठक से मंत्री पोखरेल से सरकार 1 महीना भीतर परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक करना सरकार के प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुई उल्लेख करती अब परीक्षा में असफल हुई विद्यार्थियों के लाख पूरक परीक्षा के तैयारी कक्षा संचालन करना प्रतिबद्धता जनाइले बाटे सोमवार के प्रकाशित नतीजा अनुसार 2,48,160 विद्यार्थी ग्रेड हुके 65.98% विद्यार्थी सफल हुई बाटे कलश 1,46,507 विद्यार्थी नॉन ग्रेड हुई बाटे नॉन ग्रेड हुई विद्यार्थी उकरण की ग्रेड वृद्धि मऊका परीक्षा लाभ हुई नवा मंत्री पोखरेल से देशभरिक विद्यालय भवन खेल मैदान शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी और संरचना के विस्तृत अध्ययन पूरा प्राप्त होना तथ्यांक के आधार में विद्यालय तह के सकू पूर्वाधार संरचना समेत पुनर्संरचना करना बतवा गिलवा बैठकमा सांसद हुकुरा सुकुमवासी बस्ती मंशी विस्थापित बाल बालिका हुकुरा इनके पढ़न लिखना केलाग सरकार से विशेष व्यवस्था करे पर्ना शिक्षा विधेयक तत्काल लाने पर्ना खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापना करे पर्ना हो विद्यार्थी हुकुरा इनके लाग ई बुक के व्यवस्था करना सरकार हे सुझाव दिल बाटे सांसद हुकुरा विद्यालय में खाजा कार्यक्रम हुना गलत अनियमितता रोकना हो तमाम 17 प्रकार के शिक्षक हुकरन के समस्या समाधान करना सरकार तत्काल कदम चलाए पर्ना विचार व्यक्त करती व्यवसाय को सीमूलाक शिक्षा के लग विद्यालय तह के पाठ्यक्रम परिमार्जन करना सरकार के ध्यान आकर्षण करेना बटवागिल्वा शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हुकरा हालसम रलक कार्य प्रगति विवरण पेश करती देशभर के 17,000 सामुदायिक विद्यालयमा समेत 2,32,105 शिक्षक तथा कर्मचारी हुकरा जानकारी कराइल बाटै खोजखरमा गरी विश्राम विश्राम पाछ फेर सही बी सुन्तिर बी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम आदरणीय अभिभावक शिक्षक कर्मचारी प्यारा विद्यार्थी तथा शुभचिन्तक सबैमा नयाँ वर्ष 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। यो नयाँ वर्षले यहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र सफलताको नयाँ ढोका खोलोस्। हरेक दिन नयाँ आशा नयाँ ऊर्जा र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। खड्ग मेमोरियल सेकेन्डरी स्कूल तथा वर्गीस होस्टेल परिवार टिकापुर कैलाली।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080 कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना।
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। तपसिल
2: प्रवेश परीक्षा फारम वितरण हुने मिति 2083 साल वैशाख 21 गते सम्म सीट संख्या 48 जना मात्र फारम उपलब्ध हुने समय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म आवश्यक कागजातहरू कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र फोटो 2 प्रति।
3: प्रवेश परीक्षाको मिति टिकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा संघको समन्वयमा तय गरी जानकारी गराइनेछ।
2: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टिकापुर 1 कैलाली प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा सम्पर्क फोन नम्बर 9858441467 र 091551411।
0: विश्राम पाछ फेर स्वागत बा। जानकी गाउँपालिकाकै आयोजनामा 5 दिने सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन तालिम शुरू होइल बा। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 शुरू होइलक तालिममा जानकी गाउँपालिका 3 स्थित सञ्चालन हुइत रहल होमस्टेमा आबद्ध नागरिक हुकरनके सहभागिता रहल बताइल बा। तालिममा उद्घाटन गर्ती जानकी गाउँपालिकाकै अध्यक्ष गणेश चौधरी तालिमकै सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नबाटै अध्यक्ष चौधरी हाम्रा पैसा कमाइन नै जनलक अवस्थामा पैसा कमाइन डगराके पहिचान केलक यी तालिम आयोजना गरल बटुलेबाटै तालिममा सक्रिय सहभागिता जनेना आग्रह गर्नबाटै तालिममा जानकी गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरियासे तालिममा सिखाल बाद व्यवहारमा उतर्न आफ्ना विश्वस्त रहल बटुलेबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टासे गाउँपालिका भित्र रलक होमस्टे सञ्चालनके क्षमता अभिवृद्धि केलाक तालिम आयोजना करल बटुलेबाटै तालिममा प्रशिक्षक होमस्टे घरवास महासंघके महासचिव कृष्णलाल चौधरी, होमस्टे सकु जाने संचालन कर सेक्ना ओ मनैनके जीवन संगे जोर्गिलक पेशावाला गोर्से एकर आर्थिक समृद्धि लान्न सेक्ना अपेक्षा समेत गर्दाबाटै अस्तका स्थानीय जगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष निरबहादुर शाह सेफे जगतपुरमा स्थापना होइलक होमस्टे संचालन केलक। सामुदायिक वनवासले सहयोग गर्न ओ आगामी दिनमा फे सहयोग जारी रहन बटोले बाटै। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी कार्यक्रम संचालन गर्लो है। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य पार्वती चौधरी स्वागत गर्लो है। तालिममा जानकी गाउँपालिका के अमौरी जगतपुर बोकलहुवामा संचालित होमस्टे आबद्ध 25 जाने के सहभागिता जनाइल बतागिल्बा। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोथिमी से सातामा दुई दिन विदा देना सरकार के निर्णय पासे विद्यालय देतीलाक हिउँदे बर्खी विदा कटौती करल जनागिल्बा। केन्द्र के अनुसार हिउँदे बर्खी विदा के साबिक के 45 दिन हे समेत 30 दिन कायम करल बटवागिल्बा। सोमवार से शुक्रवार सम पूरा समय पढ़ना लिखना समयमा क्रियाकलाप करना केन्द्रित समेत निर्देशक डाक्टर श्याम प्रसाद आचार्य सहस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत सबको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्थानीय तह विद्यालय अनुरोध करल बटागिल्बा। प्रत्येक दिन प्रार्थना बक्के समयमा 15 मिनट ओ खाजा के समय 30 मिनट व्यवस्थापन गर्न केन्द्र से सर्कुलर जारी करलबा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय से कालिक निर्णय अनुसार शैक्षिक संस्थाकरण के पठन पाठनमा स्वीकृति पाठ्यक्रम से टोकल अनुसार के कार्य घण्टा मिलान केलाक ई व्यवस्था करल केन्द्र से जनाइलबा। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले कुछ सीमित समूहका पूँजी बजारमा रलकोर्से हेरफेर गर्न इनसाइडर ट्रेडिङ समेत तथा जनताके 15-16 अर्ब रूपियाँ दुरूपयोग गरे अकुट सम्पत्ति आर्जन करल आरोप लगाइले बाटै। मंगलबारकै बैठक अर्थ समितिकै बैठकमा बोल्ती उहाँ विगत कुछ वर्षमा वित्तीय तथा आर्थिक संस्थामा निश्चित व्यक्तिहरूकै कब्जामा गएल उसके कटु यथार्थ स्वीकार समेत गर पर्न अवस्था रलक बटोले बाटै। अर्थमन्त्री वागले नेपालकै पूँजी बजार हे व्यावसायिक पारदर्शी हो विश्वसनीय मापदण्ड अनुसार विकास गर्न सरकारकै लक्ष्य रलक स्पष्ट पर्ले बाटै। प्रतिनिधि सभाकै बैठक आज बिहानकै 11 बजे बैठिबा। आजकै बैठकमा सरकारकै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम उपर छलफल हुने कार्यसूची रहलबा। संघीय सांसद सचिवालयकै अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह से राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार के संघीय सरकार के सांसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक में प्रस्तुत करगिल आर्थिक वर्ष 2083-84 में सरकार के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम उपर छलफल प्रारम्भ करी कहना प्रस्ताव पेश करना कार्यसूची रहलबा। बैठक में नीति तथा कार्यक्रम उपर सांसद संकलन के दर्ता करायल संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर पाछे ओकर उपर छलफल हुइनबा। एकर नीति तथा कार्यक्रममा छलफलके क्रममा उठल प्रश्नके जवाब प्रधानमन्त्री शाहसे देना कार्यसूची रहल सांसद सचिवालयसे जनाइलबा। खोजखरमा एघरी विश्राम पाछे फेरसै सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।

0: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
1: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बाल बालिकाको व्यवस्था भएको र बाल बालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
0: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगरके घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
5: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। सिमानामा होइती आयल 100 रुपया से ढेर सामानमा नेपाल लाने बेर भन्सार लग्न व्यवस्था सरकार से संशोधन गर्न होइल बा। सरकार से हाल कायम हुई 100 रूपया के सीमा बढ़ाने तैयारी करल बा। अर्थमंत्री डॉक्टर सोनी बागले से ऐसी नियम ई आगे नई आर्थिक ऐन में व्यवस्था हुई लेकोर से आगामी बजेट मार्फत सीमा मा समेत बढ़ाना उल्लेख कर गिल बा। मंगलवार के बैठक प्रतिनिधि सभा के समेत अर्थ समिति के बैठक में वहां सीमाना में बैठक नेपाली उपकरण के सार्वभौमिकता के रक्षा करना मुख्यतः तराई मधेशमा नेपाली नागरिक उक्रणके दैनिक जीवनयापनमा सहज गर्न सरकारके नीति रहल बटोइलबाटै नागरिकके लागि भन्सार सीमा सुविधा बढ़ाके फे तस्करीके समस्या वस्तुको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भर सरकारमा समेत निर्मम बन्न उहाँके धारणा बा। एमक एकलाख आधुनिक प्रविधिके क्यामेरा वस्तुके फेस रिग्रेसन डिभाइस नाइट वस्तुक विजन के समेत बाटमा एआई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालय हे बजेट विनियोजन गर्न उहाँ जानकारी दिले बाटै आगामी बजेटमा सरकार से संस्था ओ समेत पूँजी बजारमा समेत ढेर सुविधाके कार्यक्रम लड्न तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर वागले जानकारी दिले बाटै सरकार अपनीमा उत्पादन कारखाना खोल्न नै हो कि एकरलक समेत तयार निजी क्षेत्रसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योग बन्द उद्योग पुनस्थापना गर्न नियत के साथ आगे बढ्न योजना रहल बटोइले बाटै। हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली स्थानीय वायुको प्रभाव रहल बा। हाल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार गण्डकी, कोशी, बागमती ओ गण्डकी प्रदेश के देश के हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलन बाँकी भूभागमा आंशिक बदलन बा। बागमती ओ गण्डकी प्रदेश के कुछ स्थानमा हल्का वर्षा होइती रहल बा। महाशाखा के अनुसार आज दोपहर के कोशी, मधेश, बागमती ओ गण्डकी प्रदेश लगायत के देश के हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलना बा। कलसे बाँकी भूभागमा आंशिक मौसम बदल सेक्नेवा। कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश के कुछ स्थानमा तथा मध्य प्रदेश लगायत के बाँकी हिमाली पहाड़ी भूभागमा कुछ स्थान तथा बाँकी तराई भूभागमा एक दुई स्थानमा मेघगर्जन और चट्याङ सहित वर्षा और हिमपात के सम्भावना बा। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग के कुछ जिल्लामा हावाहुरी असिना पानी मेघगर्जन और बाजमर्न के सम्भावना रहल बा। ओआईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुई अन्तर्गत के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय खेलमा नेपाल स्कटल्याण्ड संगे पराजित हुई। कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा कालीखुल खेलमा नेपाल स्कटल्याण्ड संगे दुई रनसे पराजित हुई। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर मन से एसई मत चार जीपीएल लड़ना माउंट सैपाल के हृदय कुवार एकेली विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय में कर्णाली मावी टीकापुर उत्कृष्ट नॉन ग्रेड विद्यार्थियों करण के लाख पूरक परीक्षा के तैयारी कक्ष संचालन करना विद्यालय है देती ऐलक हिउदे और बर्खे विदा के कटौती जानकी गांव पालिका में दुई दिन वित्तीय साक्षरता शिक्षा बचत तथा ऋण व्यवस्थापन में क्षमता विकास तालीम चलती हो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुई में नेपाल स्कटल्याण्ड संगे पराजित लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकिए के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनती विराम राम।
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
7: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
6: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
5: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
7: आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772।
8: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग इष्टमित्र शुभचिन्तक आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
9: अर्जुन वाच सेन्टर बलभद्र चौक टिकापुर कैलाली।
7: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दादू भैया दीदी बहिनी हुकरण में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
9: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध कराया जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम भी कराया जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
7: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 9868700825।
10: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने न पट्टा नि पैना त
11: अनि गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
12: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
11: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हौ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
12: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161
13: नववर्ष 2083 साल को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ विद्यालय भर्ना अभियान 2083 सुरु भइसकेको छ सबै अभिभावकहरूले आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ अध्यक्ष टोप बहादुर केसी नारायणपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र तथा अध्यक्ष मणिराम ढुंगाना भानु सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र सत्ती
14: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ हाम्रो यहाँ एसी फ्रिज मोबाइल कुलरका साथै इलेक्ट्रोनिकका सबै सामानहरू पाइन्छ र किस्ताबन्दीमा मोबाइल पनि उपलब्ध गराइन्छ याद राख्नुहोला है टिभी र फ्रिजको एक्सचेन्ज अफरको सुविधा रहेको छ इलेक्ट्रिक सामानहरू धमाधम बिक्री भइरहेको छ समयमा सम्पर्क गरी मौकाको उठाउनु होला चार चौतारी इलेक्ट्रिकल्स टिकापुर एक चार चौतारी संचालक काशीराम चपाई फोन नम्बर 9848443311
15: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
16: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
17: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
16: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
17: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
18: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com
19: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा धेरु चाउमिन उद्योग टिकापुर सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग इष्टमित्र शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ साथै धेरु चाउमिन उद्योगमा चाउमिन सस उत्पादन हुने भएकाले होटेल तथा रेस्टुरेन्टले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ
20: संचालक नारायण तिमिल्छिना सिद्धार्थ होटल अगाडि टिकापुर कैलाली
21: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: फुका पिएर ठक्क पेन्सिलेर ठक्क बुझलै फटाका आजी ठक्का कना हो का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झलान लसे त लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिखले का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठक कबू पेन्सिल हेरा कई ठक कबू झोलै फटा कई ठक बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर मर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत्गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी हरी थी, ना कबू पेंसिल हरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में। रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
4: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन, सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज। न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
4: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आस महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ लेना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत?
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा, चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत, चलो जाए मैखन संगे जीन।
1: चलो तो चलो,
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए, जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया, ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे, फोन नंबर 9806410186, थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाठ पूर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरीगढ नजिकै टीकापुर कैलाली,
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल, सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422233।
0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक तथा देश विदेशमा रहनुभएका इष्टमित्र आफन्तजनहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ आधुनिक किसिमका दराज पलङ अफिस टेबल डाइनिङ टेबल सोफा सेटको साथै अर्डर अनुसारको फर्निचर उपलब्ध गराइन्छ र घरको इन्टेरियर डिजाइन गरिनुको साथै वाल दराज किचन दराज रेलिङ बेडहरू घरमै गएर बनाउने सुविधा रहेको छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। न्यू गणेश बाबा फर्निचर उद्योग, संचालक प्रवेश चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868564478, टीकापुर एक कैलाली, ब्लक नम्बर 14।

0: अम्बिकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध। नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरोकारवाला ज्यूहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
1: नरेन्द्र दादु मैं तो अपना फोन त्याग कहाँ बाटी
2: ऊ गोन्दे में सुटल बाटी बाबू चोली नरे
1: फौजी कहाँ से काटन अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाई बाटी तर फिर काटी तो जारल ना अपना हन
3: यहाँ पोली फुकर कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो करना बाटा कटाबेर में को आप हो
1: ना से भौजी हमारा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिन चलेगी नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे चिट्ठा लगा के मोटरसाइकिल बाकला छे उहे में बैठा के भौजी है ना सरपरल से उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
2: ई बेला तक खाना जात फे दिए न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
1: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम गरमेन कुछ से खवाई ली हुई
4: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकला छे फल करा दी बेरमिया अक्टेले से झन समस्या बिना बिल कोशित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपो कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर ना फिर कठा असी कर से रक्त संसार में समस्या हुई सिखा यही ले कर बेल सपो दसलक शरीर का भाग काट खफा को नावस्था थे आई सिखा
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेक्दिथा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खैनास लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खैनास मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलट चलो जाए मई फैन संगे जिम
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806101186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स आफ्नो ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त इष्टमित्र साथी भाइहरूमा नयाँ वर्ष 2083 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै हाम्रो यहाँ ई रिक्सा अटोका पाठ पूर्जा पाइनुका साथै ई रिक्सा बिक्री पनि गरिन्छ। त्रिमूर्ति ट्रेड सप्लायर्स सशस्त्र प्रहरी गढ नजिकै टीकापुर कैलाली
2: संचालक चन्द्र प्रकाश रेग्मी र रविन्द्र हमाल सम्पर्क नम्बर 9854447244 र 9854422233। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग इष्टमित्र शुभचिन्तक आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमंग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: अर्जुन वाच सेन्टर बलभद्र चौक टीकापुर कैलाली।
0: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकरन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा चोलिया धोती सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम भी करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 9868770825।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपनी हुकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मलाव सम्र पात्र और नेपाली पात्र में फिसिंटी रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से फोटोकपी पिना पानी में ठगती उपभोक्ता बढ़ी मूल्य लेना है कार्यवाही करना नगरपालिका के कहे। टीकापुर में युथ अफ टीकापुर के आयोजन में खुला महिला प्रतियोगिता हुआ खेल प्रेमी को खुशी। डोटी में बोलेरोले नगर बस न ठक्कर दिलक 5 जना घाइते। यूक्रेन में रूसी हवाई आक्रमण 8 के मृत्यु 11 जना घाइते। टीकापुर भेषराज नायक फोटोकपी कलक महंगो शुल्क 3 पलक बोटी लेखा पटके व्यवसायी धनबहादुर मुढाफे महंगो निःशुल्क तिर्के फोटोकपी कटिरहल बोटिलो सेवाग्राही धनबहादुर भोरा पानी 30 रूपया बोतल किनके खैलको महामूल्य कम बाकेके था नै पैलक फे ठगती रहल बोटिलो बाट। वहां जस्ता अन्य नागरिक पतिराम चौधरी व शांतराज शर्मा फे पानी फोटोकपी में हस्ताकर के ठगलक बोटिलो बाट। जनक भूषा सेवा के व्यापारी संजय चौधरी के फोटोकपी कलक 10 रूपया लेना कलबाट। सबको व्यापारी के 10 लेना हुईपा वहां फे 10 रूपया लेना कलबाट। और व्यापारी निरपथकुल्ला फे 5 रूपया में फोटोकपी सेवा देना कलक बोटिलो बाट। और व्यापारी फे 30 रूपया में पानी बिक्री कलक बोटिलो बाट। कानून व्यवसायी मुक्ति प्रसाद शर्मा मालपोत कार्यालय आजर पाजरलक व्यापारी को फोटोकपी पानी में ढेर ठगी करती रहल अपन महंगो शुल्क तीर्ण बाध्य हुलक असिन बाट में अनुगमन करना सुधार करना आग्रह कलबाट। कोचबेर ने आग्रह 25 बिक्री में हुटी रहल पानी नगरपालिका के अनुगमन टोली पुगल पाछ सेवाग्राही नमराज परियार 20 में किन्नबाट। टीकापुर नगरपालिका के अनुगमन अधिकृत चंचू आचार्य बोतल में मूल्य तोकलक तोकिल मूल्य से ढेर भरी नई लिना थेहोरिल्ला से भेट गल से कानून बबोजिम कार्यवाही हुई बोटिल बाटी। लम्बा समय पछि टीकापुरमा खुल्ला महिला फुटबल प्रतियोगिताकै आयोजना हुलक यहाँका खेल प्रेमीको खुशी हुलबाट। अस्था प्रतियोगिता आयोजना हुल खेल प्रेमी हुकुन केलाक अवसर समेत हुलक उहाँ बोटिलबाट। खेल प्रेमी कमल कार्की बोटिलबाट कमल कार्की जैसी नौरो खेल प्रेमी रोशना रावल फे अस्थाका महिला फुटबल प्रतियोगिता हुलक महिला हुकुन केलाक अवसर व खेल प्रदर्शनका नाम माध्यम हुल बोटिलबाटी। अब टीकापुर युथ अफ टीकापुरकै आयोजनामा शुरू हुलक खुल्ला महिला फुटबल प्रतियोगिता जारी रहलबा। अस्थाकरके प्रतियोगिता हुटी रहल खण्डमत छात्राहुकन फुटबल सिक्ना सहस हुइना दे गिल्बा खेल प्रेमी अनिल कोरेलाई विगतमा छात्रा फुटबल प्रतियोगिताकै दिन सम्झटी अबक महिला फुटबल प्रतियोगिता थियो नै परिष्कृत व स्त्रीय हुलक बोटिलोबाट। अस्थाका आयोजना हुना प्रतियोगिताकै एकठो महिला फुटबल खेल नै हो केफे महिला हुकुनलाई कुस कर सिक्ना हुना सहस देना बोटिलोबाट मोहिता विष्ट। इथ अफ टीकापुर महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना करना जुन साहस करल ऊ छात्रा हुकुन केलाक महत्वपूर्ण लक बोटिलोबाट हरि तिमुल सेना। अस्थाकरके आयोजना हुना प्रतियोगिता मसे स्थानीय हुलक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकी खेलाड़ी रूपे उत्पादन हुलक। अस्थाका प्रतियोगिता हुना खेलाड़ी हुकुन केलाक मजा अवसर हो। डोटीमा बोलेरो जीव नगर बससँग ठक्कर दिलक 5 जना घाइते हुलबाट। जिल्लाकै शिखर नगरपालिका 10 बाण्डुङ गैरीसैनमा बुधबार बिहानकै हुलक दुर्घटनामा यात्रुवाहक बसमा सवार 5 जना घाइते हुलबाट। प्रहरीकै अनुसार बिहानकै करिब 9:30 बजे धनगढ़ी मसे बाजुरातर्फ जैती कलक सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 J001 नम्बरकै बोलेरो जीव ओहो दिशातर्फ गइतिरहल। शिखर नगरपालिका केसे 1X2006 नम्बरके बसमा रोकलक अवस्थामा 5-6 मसे ठक्कर दिलक नै दुर्घटनामा घाइते हुलक। डुराके नवदुर्गा गाउँपालिका 4K13 वर्षीय प्रेमका विष्ट। शिखर नगरपालिकाके 10K70 वर्षीय दीर्घ बहादुर बलायर। बाजुराके बढी मालिका नगरपालिका 1K50 वर्षीय कल्सी थापा। बढी मालिका 9K26 वर्षीय भीष्म भट्ट तथा बुढी गंगा नगरपालिका 9K27 वर्षीय सीतादेवी थापा रहलबाट। प्रहरीकी अनुसार अधिकांश अधिकांश घाइते की अवस्था में सामान्य रहला से फिर ट्रेन का विस्तके कपारी में चोट लगल अवस्था मध्यम रहल बा सबको घाइते की स्थानीय शिखर पोलिक्लिनिक में उपचार करती रहल बा दुर्घटना में संलग्न बोलेरो जीप चालक जय कुमार प्रहरी नियंत्रण में लग जनल बा घटना बारे थप अनुसंधान हुईटी रह जिला प्रहरी कार्यालय डोटी जनल बा खोज खबर में एक विश्राम विश्राम पासा फिर से विश्वी सामुदायिक रेडियो टीका प्रोएफएम
1: भरना खुले हो
2: टीकापुर नगर को प्रथम शैक्षिक धरोहर वीरेन्द्र विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2083 का लागि तपसिल को कार्यक्रम बमोजिम कक्षा पीजी देखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुले को सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
1: भर्ना कार्यक्रम
2: नया विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुभारम्भ 2083 वैशाख 2 गते बाट नया शैक्षिक सत्र को पढ़ाई शुरू 2083 वैशाख 7 गते बाट
1: वीरेन्द्र विद्या मंदिर का विशेषता
2: विद्यालय हाता भित्र स्वस्थ हरित वातावरण भएको
1: दक्ष र अनुभवी शिक्षक बाट अध्यापन गराइने
2: एक परिवार का 3 जना में 1 जनालाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिइने
1: विद्यालय में घेरा पर्खाल का व्यवस्था का कारण बाल बालिका को सुरक्षा को निश्चितता भएको
2: सीसीटीभी क्यामेरा द्वारा शैक्षिक गतिविधि को अनुगमन गरिने
1: नेपाल सरकार को नीति अनुसार जेहेन्दार दलित जनजाति महिला अपाङ्ग अनाथलाई निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हुने पर्याप्त खेल सामग्री र खेल मैदान को सुविधा भएको
2: ई पुस्तकालय तथा पुस्तकालय को सुविधा रहेको
1: हालसालै जडान भएको शुद्ध स्मार्ट खाने पानी को सुविधा रहेको
2: विद्यालय को खेल मैदान में नवनिर्मित अत्याधुनिक कवर हल भित्र विविध अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन गरिने
1: स्काउट प्रशिक्षण को व्यवस्था भएको
2: कम्प्युटर ल्याब र विज्ञान प्रयोगशाला को पर्याप्त सुविधा भएको
1: बाल मैत्री शैक्षिक वातावरण भएको
2: विद्यालय हाता भित्र स्वास्थ्य चमेना गृह सुविधा रहेको
1: र प्राथमिक उपचार र विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन गरिदै आएको
2: प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली
1: फोन नंबर 091-560-220 र मोबाइल नंबर 98-584-23-220 र 98-678-80-911
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफे शाखा टीकापुर कैलाली
5: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
6: के गरु त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
5: दाई बरु एक पटक टीकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
6: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
7: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टीकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टीकापुर फोन नम्बर 091-560-095 मोबाइल नम्बर 98-484-27359
8: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुञ्जिना डाग देख पर्लसी हात गरा झमझम गर्न तथा मास सुहाक बठिना हुलसे कुष्ठरोग हुइसेक्था।
9: कुष्ठरोग महिला व पुरुष जेहेफे लागसेक्था। कुष्ठरोगको शंका लगती कि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
8: महिला उग्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्ना घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी।
9: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।
0: विश्राम पाछा फर्से स्वागत बा। स्थगित हुलक प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः सुचारू हुलवा प्रतिपक्षी दल के सांसद हुक्र बैठकमा अवरोध पाछ दोस्रो जो स्थगित हुलक बैठक पुनः सुचारू हुलवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद बैठकमा उपस्थित होके जवाबदेह माग धरती प्रतिपक्षी दल के सांसद हुक्र बैठकमा अवरोध कायम कर्ला रही। बैठकमा 3:30 बजे 15 मिनट के लागि स्थगित हुलक सभामुख दोलप्रसाद अर्याल जानकारी गरेला रही। बैठक 22 मिनट पाछ पुनः सुचारू हुल प्रतिपक्षी दल हुकनमा नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले श्रम संस्कृति पार्टी राप्रपा के सांसद हुक्र सामूहिक रूपमा विरोध जारी धरलबाट। बैठकमा नेकपा एमाले के संसदीय दलके प्रमुख सचेतक एन महर धारणा धरलबाट। प्रतिनिधि सभाकै आजकै बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले सरकारकै आगामी आर्थिक वर्षकी नीति तथा कार्यक्रम के छलफल प्रारम्भ गरेसकै प्रस्ताव प्रस्तुत कला रही। सभाकै दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै तर्फमा अर्थमन्त्री डाक्टर वागले नीति तथा कार्यक्रम के ऊपर छलफल प्रारम्भ करियोस्के प्रस्ताव प्रस्तुत कला रही। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर वागले प्रस्ताव प्रस्तुत करके लगत्ता प्रतिपक्षी दलके सांसद हुक्र प्रधानमन्त्री शाहके उपस्थितिके माग गर्दै अवरोध शुरू कला रही। अवरोधकै बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग समयके माग गर्के नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलके नेता भीष्मराज आङदेम्बे नीति तथा कार्यक्रम के ऊपर छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहके उपस्थिति आवश्यक अनिवार्य र लगबुटिलोबाट। नेता आङदेम्बे यदि प्रधानमन्त्री शाह बिरमेहुकन के हुलासेफे ऊ जानकारी कराइना नै करेना कैकी नीति तथा कार्यक्रम दक्षिण महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थिति हुनुपर्ना कति उपस्थिति केलाक रूनीकर्णा सभामुखसँग महाकलबाट। बैठकमा सभामुख अर्याल सरकारकै प्रस्तुत गलत नीति तथा कार्यक्रम छलफल गर्के अझ निर्णयके यथार्थ प्रस्तुत गर्न कार्यसूची रलसेफे सम्भव नहुलाको कालकेलाक प्रधानमन्त्री संघ सांसद कर्के आँखा बढ़ना कति छलफल केलाक आँखा बढ़ेना सहयोग गर्न सांसद हुकरसँग आग्रह कलबाट। उहाँ प्रधानमन्त्रीकी उपस्थिति केलाक रूलिङ से फेस संवाद करके अवस्था बुझके आफ्नो सभा संचालन केलाक आगा बढ़ना हो सरकारके प्रधानमन्त्री उपस्थिति हुई नै सकलक विषयमा लिखित प्रस्ताव पैलक अवस्थामा छलफल आगा बढ़ेना सहयोग फे आग्रह कलबाट। प्रतिपक्षी हुनके अवरोधकै बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीकै मन्त्री टेबल करल पाछक कुन नियमके प्रधानमन्त्री बिना छलफल आगा बढ़ नै सिक्न हो कैके कपड़ना कति आफ्नो पुरान ध्योर नियम टोटके आगा बढ़ना आइलक बुटिलोबाट। नेकपा एमालेकी नेता पदे आर्याल नीति तथा कार्यक्रमके प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हुना सांसदकै उठेलक विषयमा जवाब दिना जिम्मेवारी फे प्रधानमन्त्री नै हुलक प्रधानमन्त्री शाह उपस्थिति केलाक रूलिङ कणामा कति रूलिङ हुलक अवस्थामा बैठक चल देना बटिलोबाट। खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसेबी सुन्तिरेबी सामुदायिक रेडियो टीका एफएम।
10: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
11: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
10: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरू ना पटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना उट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
12: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
13: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
15: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
14: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
16: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
15: डाक्टर आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
14: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
17: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
18: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली। संचालक मदनराज देवकोटा। स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा। अब विदेशकी खबर। युक्रेनकी निप्रो पेट्रोभस्क क्षेत्रमा हुलक रूसी आक्रमणमा प्रकि 8 जनाकी मृत्यु हुलक संग अन्य 11 जना घाइते हुलक युक्रेनी अधिकारीहरू र बुधबार बटुलबाट। अधिकारीकी अनुसार रूसी सेना यही क्षेत्रमा करिब 30 ठो हवाई आक्रमण कलक महक र ज्यान गैलसे फे अन्य घाइतेहरूबाट फे धेरराष्ट्रिय भवन तथा पूर्वाधार सुविधामा क्षति पुगलबा। इन्स्याघ अधिकारीहरू र रूसी सेनाकै निपो पेट्रोभस क्षेत्रमा 50 ठो सिद्धिहरू बढ़ी टोप तथा ड्रोन आक्रमण कलक 5 जना घाइते हुलक रिपोर्ट कला रही। अनि कम अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासकै बीचमा सन् 2022 फेब्रुअरी से शुरू हुलक रूस युक्रेन युद्धकै हालसम्म कोनो समाधानमा पुग्ना संकेत देखल नै हुलक भए। निरन्तर सैन्य अपरेशन ओ दुई पक्षीय बीच आक्रमणमा हुटिरहलबा। यस समाचारसँग खोज खबर बढ़ाइल जनाइसे पहिले खबरके मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। फोटोकपियो पिना पानीमा ठत्ती उपभोक्ता, बढ़ी मूल्य लेना हा कार्यवाही कर्ना नगरपालिका के काहे। टिकापुरमा उठप टिकापुरकै आयोजनामा खुल्ला महिला प्रतियोगिता हुला खेलप्रेमी। डोटीमा बोलेरो नगर बसमा ठक्कर दिलक 5 जना घाइते। युक्रेनमा रूसी हवाई आक्रमण 8 जनाकी मृत्यु 11 जना घाइते। रीता बुकला खोज खबर रत्र प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटी अबुकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदा हिटू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन्न सिग्दी सामुदायिक रेडियो टीका पुरा एफएम सुन्ती रवि राम राम।
19: आरएमई स्कूल टीकापुरमा विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
18: नयाँ वर्ष 2083 सालको पालन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टिकापुरमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
19: आरएमई स्कूल टिकापुर कैलाली। सम्पर्क नम्बर 0915612050 र 0915607712।
20: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।
16: रानी जमरा कोलरियासित भण्डारगिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डारगिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभाको बैठकको गणपूरक संख्या नपुगी तपसिलको मिति स्थान र समयमा पुनः बस्ने भएकाले पूर्ण पार्षद ज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानेर साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 10 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभाहल, समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 091-561-022। रानी जमरा कोलरिया सिट भण्डारगिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलाली।
2: दाई नन्दबा कहाँ जाइ लाग्दो त
21: हिसाब लाग्ता चर्पी जाइ टुका
2: ए रुको नाट पछि नोकला छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिएटु लेख जाओ
21: काचे चुनु लट्ठी ओ टर्च लाइट
2: का कर रही दाई राति बेला बाहे निकल पर्ला छे वा टोयलेट जाइ पर्ला छे जहिया फे टर्च लाइट बार्ख ओ लम्बा लट्ठी लेख के हो जाइ पर्था का कर कि बर्खा छ्याक्बा साँप रहसे थ टर्च को अजलाले साफन ल्या खसे जैथा वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आओ सुनख साफ भक्त का
21: हो कतरा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
2: दाई हमन्ना स्कूली मैडम सर मुख साफ मुख से ठाउसी न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहिया फेठा फोसिया रिपोर्ट था गई सिखेल बाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याग पत्था गई कल बाट
22: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परेछ यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पस्ना पिलाकोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुँदा बाहिर निस्कट
23: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फेर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
21: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जैठा
24: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
25: गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलमा भर्ना खुल्यो
26: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि पीजीदेखि कक्षा 12 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
25: गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलका विशेषताहरू
26: 4 GPA ल्याउन सफल भएको
25: एसईमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पास गराउन सफल
26: डिजिटल प्रविधिद्वारा अध्ययन गराउने
25: आफ्नै पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
26: साथै खेल मैदानको सुविधा भएको गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल टिकापुर कैलाली प्रधान अध्यापक गजेन्द्र बुढा सम्पर्क नम्बर 98-48-46-63-01 र 97-42-39-377
27: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
25: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
27: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
25: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
27: अब त म ढुक्क
28: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
25: मोबाइल नम्बर 98-48-51-43-26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: धनगढ़ी वाटरप्रुफिंग एंड होम डेकोर टीकापुर का लगी संपर्क भरत अधिकारी सशस्त्र प्रहरी कोण पछाड़ी फोन नंबर 98648 36 213।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलको से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरन यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
1: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
1: ए, यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
1: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नै निकर्छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: कबू का तीय रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर वस्ता बाटिन गटीलो ठाउ से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं रहे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

महाराज परीक्षित श्री सारा संपूर्ण प्रकार को प्रक्रिया में पूर्ण भैर माता श्री इस प्रभाव बाट अब म कसो करूं भगवान लौन दया को सागर भनेर विनती करने वाला छोरो राजकुमार जंगल जानू भो जंगल में पाल् भई सके अहिले परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री हरि इसको प्रभाव बाट इच्छा पूर्ण करना को लगे शाश्वत ब्रह्म ज्ञान को उपदेश को निमित्त अहिले तैयारी भर अब कहाँ जाऊं के करूं कसो करूं बड़ा अप्ठारो पर्यो त्यो अप्ठारो लाई भगवान परमात्मा उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गिरी को राजकुमार अहिले जब जब नारद नाम गिरी का ऋषि को पास जंगल में पुगे आपको स्वागत नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए भन्ने सपन को कथा है सद्याबाट महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव सौतारे आमा का कोप रूपी वचन को बाण बाट तीर्थ करना का लागि जंगल जानुभयो। बीच बाटो में गई सके रात्रि का समय में आमा ब्यौजन रुनु उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुवलाई नारदले समझाउनु राजन जान हुँदैन तिमी सानो छौ बाबा कहाँ जान्छौ भनेर सताखेरी म उत्तनपाद राजा को छोरो ध्रुव मेरो सौतानी आमाले मेरो बाबाको काखमा बस्दा आज गलत्यार हुराइदिनु भयो अहिले जब बाबुको काख त पाइन भनेदेखि राज्य कसरी पाउला मलाई सारी चोट पर्यो सारी मर्म पर्यो मर्म मर्म खाउ पर्यो यसै कारणले म जंगल जान्छु गुरु आज्ञा पाम तमाम देव आज्ञा दी बस्नु पर्यो मेरा गुरु भनेर भन्दा मेरो राजा तिमी सानो युवा बच्चालाई कसरी आज्ञा दिउ जंगलमा बाघ बालु हात्ती गेडाको भए मरी मसानको भए प्रेतात्माहरूको भए जान हुँदैन भन्नुभयो त्यसो होइन गुरु म जब मर्न तयारी हुन्छु तर फर्कन चाहन्न विधान सिकाइदिनुहोस् भन्दा लो मेरो बाबा तिमी अहिले सरासर जाऊ यमुनाजीको उत्तरपट्टि एउटा मधु नाम गरेको वन छ त्यो मधु नाम गरेको जंगलमा गएर भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने यो मंत्र पढ़ थोड़े दिन में भगवान प्रसन्न भई बसने तिम्रो चित्त भगवान में लाओस् यही प्रकार को तिमला शुभ संदेश का साथ आज जाऊ तो बने भगवान प्रभु ने पठाई दिनु भोर उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजकुमार अहिले मधुबन में गए भगवान नारायण वासुदेव को पर ब्रह्म चित्त लगाईकर ध्यान कर लग्नभयो ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो